0: The Commonwealth Games.
1: जोश, जुनून और जज्बा, कहने के लिए तो सिर्फ तीन शब्द हैं, पर इन शब्दों में जान डालते हैं हमारे देश के खिलाड़ी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित खेलों में अपनी मेहनत और शिद्दत से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। नमस्कार, ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 8वें दिन के अपडेट्स के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का आकाशवाणी में स्वागत करते हैं।
2: खेलों का 8वां दिन भारत 5 स्पर्धाओं में था। भारोत्तोलन की स्पर्धाएं कल समाप्त हो गयी। भारोत्तोलकों ने भारत को कई पदक दिलाए, लेकिन खेल प्रेमियों की इच्छाएं तो हमेशा और ज्यादा की ही रहती हैं। कल से ही ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धाएं आरंभ हो गयी, सामान्य ट्रैक और पैरा ट्रैक दोनों ही, लेकिन सारी निगाहें थी एथलेटिक्स पर। सुपरस्टार नीरज चोपड़ा सहित कई भारतीय सितारे ट्रैक और फील्ड की स्पर्धाओं में थे। किसी को क्वालिफाई करना था तो किसी को मेडल के लिए मशक्कत करनी थी। कैसा रहा 8वां दिन, पेश है सारा विवरण।

0: कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर, साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं। सलाम है सीमा आपको। नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजेंद्र सिंह तूर। शॉटपट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन। उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, तूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका। तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए, वे पांचवें स्थान पर रहे। तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली। उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए। स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयमबुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ। 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए, 20.65 सेकंड का समय और उनसे बहुत पीछे था। कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथी सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15:08.56 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलान में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जंप स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये प्रदर्शन जारी रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर।
1: आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 15 मेडल्स सो फार एंड द नेक्स्ट 3 or 4 डेज वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग बाउट्स कमिंग अप। देयर आर 8 or 10 ऑफ द बॉक्सर्स हु मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। देयर आर वेटलिफ्टर्स एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द मेगा इवेंट ऑफ जैवलिन एंड द ट्रैक एंड फील्ड एज वेल। So looking forward to a healthy tally of the Commonwealth Games for the closing ceremony.
2: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
0: इन खेलों में साइकिलिंग की स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है। सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे। भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था। पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और देशों के मुकाबले थी। 3 साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार एक एक करके। टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी। एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्डो सिंह लाइथोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेन। अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है। बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं, लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे। महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन। और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि। देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं। मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
3: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन। 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ पूजा, लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। 10:08:45 कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जान लें मौसम का हाल। तो स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, मध्यम से हल्की वर्षा होती रहेगी, कुछ कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करें अगर गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 29.4 यानी कि सामान्य से 3.1 डिग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान 27.1 यानी कि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 97% और निम्न आर्द्रता 88% रही। वर्षा 9.6 मिलीमीटर हुई। सिलसिला गीत संगीत का, सिलसिला बातों का जारी रहेगा। फिलहाल पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह।

के दिन, जी हाँ, अगर आज के दिन की बात करें हम, 31 जुलाई की बात करें हम, तो आज के दिन मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या घायल होने वाले वन रक्षकों को सम्मान देने के लिए 31 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन और जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीव दोनों की रक्षा, यानी कि वातावरण की सुरक्षा, मानव मात्र की सुरक्षा, जीव मात्र की सुरक्षा, और इसका बीड़ा उठाते हैं हमारे वन रक्षक। तो सभी वन रक्षकों को एक धन्यवाद प्रेषित करते हुए आगे बढ़े। आज के दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में। आज मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उन्हें याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब बात हो रही है लेखक दिवस

0: तो फिर एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि आपके भीतर का जो लेखक है क्या लिखना पसंद करता है? आपके भीतर एक लेखक है या आपके भीतर सिर्फ एक पाठक है? अगर आपके भीतर एक पाठक है तो वो क्या पढ़ना पसंद करता है? क्या उसे अपने हाथों से छूने वाली कागज और उस कागज पर लिखे हुए काले काले अक्षर पसंद हैं, या कि फिर वो पाठक बिल्कुल नया नवेला हो चुका है, पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और उसे पसंद है डिजिटल बुक पढ़ना? जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। क्या पसंद करते हैं आप, किताबें पढ़ना या कि फिर ई बुक्स पढ़ना, फिजिकल बुक और डिजिटल? जुड़ना चाहते हैं अगर आप हमसे तो डायल कीजिए 2213-1341। हमारा टेलीफोन नंबर आप सभी श्रोताओं के लिए खुल जाएगा ठीक 10:30 बजे। फिलहाल 10:18 और 18 सेकेंड जन्मदिन की बात हम करेंगे किताबों के इस गीत के उस पार।
1: आज के दिन

Бачкіним. एक बार फिर जुड़ जाते हैं आज के दिन से। आज का जो दिन है 31 जुलाई का दिन, शुक्रवार, जुलाई मास का आखिरी। आज के दिन को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जुलाई के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस बार 31 जुलाई को है आखिरी शुक्रवार। प्रशंसा किसे नहीं प्रिय है। कहा जाए तो जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह मन को चलाने के लिए प्रशंसा की आवश्यकता है। आईटी और कंप्यूटर सिस्टम संभालने वाले कर्मचारियों के काम को सराहने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है। आज का दिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खास महत्व रखता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और यहाँ जीवन के कुछ नए प्रयोग किए, जैसे कि खेती, पशुपालन, खादी। और इसी आश्रम से महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुनना शुरू किया। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की बुनाई भी शुरू की। गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और साबरमती आश्रम, सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का साक्षी बना। आज ही का वो दिन था, 31 जुलाई का दिन वर्ष 1933 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा था, लेकिन उनकी यादों को आज भी इस आश्रम में सहेज कर रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम से निकलकर हम रुख करेंगे स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम के बीच हुई थी।

0: आज जब मोबाइल फोन बिल्कुल आम हो गया है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, एक घर में कई कई मोबाइल फोन हैं, तो हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि वो कैसा पल रहा होगा जब पहली बार किसी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया होगा। आज का दिन हमें उसी भावना से, उसी कल्पना से जोड़ता है। बातें होंगी जन्मदिन की, लेकिन उससे पहले एक गीत।
1: आज के दिन

107 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े हैं आप दिल से दिल तक, कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप, 10:31 और 56 सेकंड। बात करें अगर आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की, तो सबसे पहला नाम लूंगी मैं, जिसे एक बार पहले भी इसी कार्यक्रम में ले चुकी हूँ, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही ग्राम में। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम, लेखन की शुरुआत की इन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में, लेकिन जब इनकी सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लेखन शुरू किया। मानसरोवर कई भागों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है और इनके उपन्यास गबन गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। आज ही के दिन जन्म हुआ वर्ष 1902 में के शंकर पिल्लई का, जिन्हें लोग शंकर के नाम से जानते हैं, भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे शंकर। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म हुआ वर्ष 1907 में। आप भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। वर्ष 1916 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म हुआ और वर्ष 1941 में अमर सिंह चौधरी का जन्म हुआ। वे गुजरात के 8वें मुख्यमंत्री थे। रुक करें बॉलीवुड का, तो आज के दिन 31 जुलाई वर्ष 1991 में जन्म हुआ था कियारा आडवाणी का, जिन्हें हम साक्षी धोनी के रूप में पहली बार पहचानना शुरू किए थे। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी बायोग्राफिकल मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और आज ही के दिन जन्म हुआ था जय जय शिवशंकर गर्ल, बिंदिया चमकेगी गर्ल, रेशमी जुल्फों वाली गर्ल मुमताज का वर्ष 1947 में। तो चलिए बैक टू बैक दो गाने सुनते हैं, कियारा और मुमताज के।

चुटकी नुस्खे। जब बात हो मुंशी प्रेमचंद की, जब बात हो किताबों की, जब बात हो लेखक की, जब बात हो पाठक की, तो एक और बात सामने आती है, किताबों के रखरखाव की। बारिश के मौसम में सिर्फ हम ही नहीं भींगते, किताबें इतनी संजीदा होती हैं कि कहीं ना कहीं किताबें अलमारियों में रखे रखे ही भींग जाती हैं। किस तरह से बचाएं बारिश के मौसम में अपनी किताबों को नमी से? तो सबसे पहले तो थोड़ा समय के साथ आगे बढ़ें, हो सके तो अपने किताबों की अलमारी में सिलिका जेल का एक पैकेट रख दें, साथ ही साथ नेप्थोलिन बॉल, बिल्कुल वो भी आपकी किताबों को कीड़ों से भी सुरक्षित रखेगा और नमी से भी सुरक्षित रखेगा। एक और खास काम कर सकते हैं, अपने किताबों की अलमारी को कभी भी दीवार से सटा कर मत रखें, उसे ऐसी जगह रखें कि उसके चारों ओर से हल्की हल्की हवा लगती रहे। साथ ही साथ जब बारिश का मौसम कह दे आपको विदा अलविदा, तो धूप दिखाना बिल्कुल ना भूलें। जिस तरह आप अपनी महंगी साड़ियों को धूप दिखाते हैं, जिस तरह हमारे शरीर को धूप की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी किताबों को भी धूप की जरूरत होती है। कभी भी नमी वाली किताबों को छेड़ने की कोशिश ना करें, पन्ने खराब हो सकते हैं, ये किताबें भी धरोहर हैं। साथ ही साथ संभव हो तो अपनी अलमारी को या कि फिर अपने उस बॉक्स को, अपने उस ट्रंक को एयरटाइट रखने की कोशिश करें। बारिश के मौसम में कुछ अखबार किताबों के इर्द गिर्द लगा दें, नमी अखबारों तक ही सिमट कर रह जाएगी। बात हुई थी सिर्फ एक चुटकी की, लेकिन जब किताबों का जिक्र छिड़ा तो चुटकी की जगह मुट्ठी भर नुस्खे पहुंच गए आप तक। एक चुटकी नुस्खे। नॉनस्टॉप गपशप, अगली आवाज अरिजीत सिंह की।

0: 5:51 नॉनस्टॉप गपशप 107 MHz पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो चैनल और आज हम बातें कर रहे हैं किताबों की। कौन सी किताब है जो आपके दिल के करीब है, फिजिकल या डिजिटल? समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो जुड़ जाइए 2213-1341 या फिर 2243-7912 पर, जहां तक संभव है 2213-1341 ही आपको कनेक्ट कर पाएगा दिल से दिल तक। फिलहाल रामलीला।
1: खूब खूब आभार, अपना गुजरात में हालो अने एनी આગળ બહુત નામનું ગામ છે, ત્યાં મજૂર વર્ગ બહુ છે, તો મને એક ગીતની ફરમાઈશ કરી હતી અને ત્યાં કઈ થાકીને લોકો સાંજે મોજુ કરતા હોય ત્યારે કઈ આવું

रामलीला की इस लीला के साथ आज के लिए कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को इजाजत। घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस आज यहीं तक। होगी आपसे मुलाकात कल सुबह एक बार फिर इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। चलते चलते आप सभी के लिए मोहम्मद इरफान की आवाज सुनते रहें, साथ बने रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 107 एफएम रेनबो पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 एफएम रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 एफएम रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ, 107 एफएम रेनबो पर है तीन का तड़का, जहाँ होती है तड़कती भड़कती एकदम मसालेदार बातें हमारी फिल्मी दुनिया की। पर से भी पहले होती है जबरदस्त लेटेस्ट ट्रैक्स भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आवारापन टू। जी हाँ, आवारापन टू के इस गाने से जो है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हुए। जी हाँ, बात होगी फिल्म जननायगन के बारे में। तलपति विजय की फिल्म जननेता इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तलपति विजय की फिल्म को अब इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा, जिसके पीछे की वजह है कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को सही समय पर सर्टिफिकेट न देना। फिल्म पहले सिनेमाघरों में 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में देरी की वजह से फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी भगवंत केसरी की 50% मिलती है। विलन की कहानी को एकदम अलग तरीके से पेश किया गया। इस फिल्म को लेकर उत्सुकता फिल्म के रिलीज होने के बाद ही साउथ सिनेमा में देखने को मिली है। तो अगर कलेक्शन की बात करें तो ट्रेंड रिपोर्ट के हिसाब से जननायक फिल्म ने 8वें दिन भारत में 3.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो बुधवार को 6.10 करोड़ रुपए के मुकाबले 34.8% की गिरावट में है। भारत में जननायक को कलेक्शन 179.25 करोड़ रुपए है, जबकि विदेशों में इसका संग्रह 260.25 करोड़ रुपए तक हो गया है। तो चलिए देर न करते हुए सुन लेते हैं अगला गाना, उसके बाद बढ़ेंगे अगले तड़के की ओर।

अब बात करते हैं दोस्तों स्पाइडरमैन की। जी हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ भारत में प्रदर्शित हुई। फिल्म का निर्देशन डस्टिन डेनियल ने क्रेटन ने किया और पहले ही दिन कलेक्शन इसने प्रमुख फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। न केवल हॉलीवुड की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े बल्कि कई भारतीय फिल्मों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इससे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया जिससे पहले दिन 67.19 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा रणवीर सिंह की धुरंधर से भी फिल्म आगे रही। हालांकि रणवीर कपूर की एनिमल ने 76.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो अभी इस फिल्म से आगे क्या होने वाला है? खास बात यह है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बिना इस ब्लॉक बुकिंग ये शानदार शुरुआत की गई है। तो फिलहाल किसने किसने स्पाइडरमैन देखा है बताइएगा जरूर हमें। फिलहाल हम सुन लेते हैं बैक टू बैक दो गाने, एक है मालिक से नामुमकिन और कॉकटेल 2 से बंधु 2.0।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। कई बार काबिलियत हार जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात साथ नहीं देते, लेकिन जब देश ऐसे बच्चों का हाथ थाम ले तो सपनों को रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे ही सपनों के लिए है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक वजहों से रुक जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और धूमंतु यानी अर्ध धूमंतु समुदायों के मेधावी छात्र इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के जरिए सहारा देती है। स्कूल की फीस हो, पढ़ाई का खर्च हो या आगे की तैयारी, पैसों की चिंता पढ़ाई के बीच न आए, ये इसका मकसद है। इस योजना के तहत छात्रों का चयन एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से होता है, मतलब साफ है मेहनत की पहचान होगी और काबिल छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि एक भरोसा है। ये कहती है अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो देश तुम्हारे साथ है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना एक छात्र की नहीं पूरे भविष्य का निर्माण करती है, क्योंकि जब पढ़ाई आसान हो जाती है तो सपने अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और चलते हैं वापस 3 का तड़के की ओर।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर

दोस्तों, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक डेविड धवन की नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, अब थिएटर के बाद घर पर देखने के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को ओटीटी पर रिलीज होने वाली हो गई है। और वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की ये रोमांटिक कॉमेडी डेविड धवन के खास अंदाज में मनोरंजन से भरपूर है। ये फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। दर्शकों और समीक्षकों ने इसे मिश्रित प्रतिक्रिया दी थी। कुछ को इसकी हल्की फुल्की कहानी, मजेदार जोक्स और केमिस्ट्री पसंद आई, जबकि कुछ ने इसे पुराने फॉर्मूला बताया। लेकिन सबसे ज्यादा सराहना फिल्म की बेफिक्र मूड की गई। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे बिना ज्यादा सोचे समझे देखा जा सकता है। तो फिलहाल 31 जुलाई को यानी कि आज के दिन रिलीज हो चुकी है ये ओटीटी पर। तो देखते हैं कि क्या रहता है ओटीटी पर इसका रिएक्शन। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं अगला गीत।

चलते चलते दोस्तों आज दिन का तड़का के आखिरी गाने तक हम पहुंच चुके हैं, जो है फिल्म राजा नटवर लाल से बिनी दयाल की आवाज़ में हमारा गीत। और उसके बाद सुनेंगे एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम हमारा, एज यूजुअल जैसे सुनते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं हमारा ये आखिरी गीत बिनी दयाल की आवाज़ में।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी।

0: श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं, लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी की, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें

0: विष्णु नारायण भातखंडे
1: लागे लगन सखी पति संग लागे लगन सखी पति संग लागे लगन सखी पति
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया।

0: इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बम्बई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो। तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो।

0: तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
4: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
5: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
6: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
4: धन्यवाद धन्यवाद।
6: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
4: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
8: लयात्मक प्रस्तुति।
7: शीर्षक है
8: अभी न होगा मेरा अंत।
7: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: तो ये थी दोस्तों एनसीईआरटी की विशेष कार्यक्रम उमंग 107 एफएम रेनबो है। आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर बाद, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये है छाया लोग।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग। छाया लोग 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग। छाया लोग
0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 7:03 और 12 सेकंड एग्जैक्टली और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आज छाया लोग के अंतर्गत। भी फ्राइडे का दिन है तो है।
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ, सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स का दिन यानी कि जहाँ बातें होती है फिल्मों की बिहाइंड द सीन्स के बारे में, साथ ही साथ दिलचस्प प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपसे ढेर सारी बातें होती है। तो लाइंस खुली हुई है 2213141 पे और कीजिए फ़ोन, कीजिए और बातें कीजिए, कोई कुछ फिल्मी कुछ दिल की बातें, बिल्कुल फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं और साथ ही साथ गाने तो रहेंगे आपके पसंद के। दोस्तों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर ही देते हैं। कहते हैं कि कल्पना की उड़ान जितनी ऊंची होती है हकीकत की जमीन उतनी ही गहरी होती है। हिंदी सिनेमा ने भी कई बार ऐसी सच्ची घटनाओं पर बड़े पर्दे पर उतारा है जिन्होंने हमें कभी गर्व से भर दिया, कभी भावुक कर दिया और कभी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज का हमारा विषय है रियल इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड सुपर हिट फिल्में। आज हम जानेंगे उन फिल्मों की कहानी जिनकी शुरुआत किसी लेखक की कल्पना से नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों, अखबारों की सुर्खियों और अलग असल जिंदगी की घटनाओं से हुई। जानेंगे उनकी मेकिंग, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें और सुनेंगे उन फिल्मों की सदाबहार गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे फिल्म से जिसने देशभक्ति की परिभाषा को ही बदल दिया। तो चलिए सुन लेते हैं उस फिल्म का पहला गीत।

तो दोस्तों ये गीत सुनते ही शायद भारतीयों की आंखों के सामने रेगिस्तान सीमा पर तैनात जवान और घर से आए खतों की तस्वीर उभर आती है। फिलहाल हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। हेलो हेलो हेलो हेलो कोई बात नहीं, फिलहाल कुछ कारणवश ये लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। चलिए बात करते हैं आगे फिल्म बॉर्डर के बारे में, जहां से हमने सुना ये गाना।

साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को श्रद्धांजलि थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के निर्देशक जीपी दत्ता ने इस फिल्म के लिए कई सैनिकों और अधिकारियों को मुलाकात की, युद्ध से जुड़े दस्तावेज पढ़े, घटनास्थल का दौरा किया और महीनों तक रिसर्च की। फिल्म के कई दृश्य राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के आसपास फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान भीषण गर्मी में कलाकारों ने सेना जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। और दिलचस्प बात संदेश से आते हैं, गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार अनु मलिक चाहते थे कि गीत में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि इंतजार की टीस भी महसूस हो। यही वजह है कि आज भी ये गीत सुनते ही हर श्रोता भावुक हो जाता है। फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह वाला किरदार जो किया था, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और पुनीत इसर जैसे कलाकार, इस हर किसी ने अपने अभिनय की कहानी को जीवंत कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे थी, लेकिन दर्शकों ने इसे पूरे मन से अपनाया। उस दौर में इतनी लंबी फिल्म का सुपरहिट होना अपने आप में बड़ी बात थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर।

ही दोस्तों फोन कॉल्स ना ले पा रहे हो ऑन एयर, पर एक के बाद एक जो है फरमाइशें आती जा रही है। मोहम्मद नसीर ने फोन किया था दरभंगा बिहार से, तो चलिए उनका जो फरमाइश था कि आज मुमताज जी का जन्मदिन है तो फिर सुना जाए उन्हीं की फिल्म का गाना मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ। कहीं कहाँ से फिल्म का नाम है लोफर, तो चलिए पहले सुन लेते हैं ये गाना।

तो थोड़ी देर पहले आपने सुना एयरलिफ्ट फिल्म से गाना सोच न सके। साल 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, हजारों भारतीय अचानक युद्ध के बीच फंस गए। हालात ऐसे थे कि हर तरफ डर, अनिश्चितता और बेबसी का माहौल था, लेकिन इसी कठिन समय में भारत ने इतिहास रच दिया। लगभग 170,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का अभियान चलाया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सिविल इवैक्यूएशन में गिना जाता है। और इस वास्तविक घटना को प्रेरित होकर फिल्म बनी एयरलिफ्ट। फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार कई वास्तविक लोगों के अनुभवों से प्रेरित था। फिल्म की टीम ने उस दौर के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया और उस समय के माहौल को यथासंभव वास्तविक बनाने की कोशिश की। एक रोचक तथ्य यह भी है कि फिल्म में दिखाई गई अफरा तफरी को वास्तविक बनाने के लिए सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया। कई दृश्यों की शूटिंग विदेश में की गई ताकि कुवैत का वातावरण हूबहू तैयार किया जा सके। संगीत की बात करें तो सोच न सके ने फिल्म के गंभीर माहौल के बीच भावनाओं की खूबसूरत परत जोड़ दी। ये गीत आज भी श्रोताओं की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा है। तो दोस्तों, सिनेमा जब सच्चाई से मिलता है तो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनाता है। अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से विराम का, और इसी विराम में हम शांतनु घोष बावरिया से कॉल किया था उन्होंने, और सुनना चाहते हैं करण अर्जुन का गाना ये बंधन। तो चलिए सुन लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे अगला गाना और आप बताएंगे कि कौन से फिल्म का गाना है ये।

तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिनकी कहानियों ने सीधे वास्तविक जीवन से प्रेरणा ली। अब रुख करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि बहादुरी उम्र नहीं इरादों की मोहताज होती है। तो उससे पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का गाना। और आप बताएंगे कि कौन सी फिल्म है ये जिसका गाना अभी आप सुन रहे हैं।

0: तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले कॉलर को हम ले लेते हैं। फिलहाल फिल्म के बारे में बात ज़रूर करेंगे। जो फिल्म है जिसका गाना आपने सुना, वो है फिल्म नीरजा। तो चलिए सुन लेते हैं फिलहाल हमारे जो कॉलर हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: आपको भी।
0: हाँ जी, बोलिए।
1: और आपके बारे में एक लाइन ही काफी है।
0: आप पहले मुझे बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाना निकालते निकालते चलिए बातें हो जाए, गप्पे शप्पे हो जाए थोड़ी।
1: फूला रंगार
0: फिल्म से आशिक पुकारो, आवारा पुकारो। फूला रंगार फिल्म एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, आप कोई और ऑप्शन बताएं तो बहुत अच्छा हो।
1: तो बेताब फिल्म से तुमने दी आवाज लो मैं आ गया पर्वतों से।
0: अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं खोजती रहती हूँ, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं।
1: तुम्हारी आवाज का नशा अलग है, हमारी आवाज का नशा ही अलग है। आपका प्रोग्राम बात खत्म हो तब भी कान में रहते हैं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा फिल्म का
1: और आज का टॉपिक जो है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बोलिए। बेटा फिल्म का कौन सा गाना बता रहे थे आप, एक बार बता दीजिए फिर से। फिल्म निकाल लिया मैंने।
1: बेताब।
0: कौन सा फिल्म, कौन सा गाना, आई एम सॉरी।
1: तुमने दी आवाज मिलो मैं आ गया।
0: ओके अब बताइए।
1: मुझे राजी फिल्म है। वो 1971 का इंडिया पाकिस्तान जो इन्वॉल्व है
0: जी,
1: वो आलिया भट्ट का फिल्म है। वो ये फिल्म उसी ऊपर पिक्चर है गया।
0: अच्छा।
1: और जॉली एलएलबी है वो 1999 का, संजीव नंदा जो राफ ड्राइव के छह लोग मरा हुआ मर गया
0: जी,
1: वो उसको लेकर वो कहानी बनाया है।
0: अच्छा।
1: और चक दे इंडिया बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन वन ऑफ देम कॉमनवेल्थ गेम का इंस्पायर्ड होकर जयदेव साहनी ये फिल्म बनाया। और गली बॉय फिल्म जोया अख्तर रियल लाइफ को इंस्पायर्ड होकर बनाया। और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, तलवार जो है वो फिल्म आरती मर्डर का केस में इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बना जाता है।
0: आप तो काफी रिसर्च करके आगे लगते हैं।
1: बहुत सारे फिल्म है, लेकिन मैं दोस्त को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ वो बोलने के।
0: ओके ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच मुरजिंदा। और सुनते हैं तुमने दी आवाज। ओके तो ये थे मुनरुद्दीन और कई सारी फिल्मों की बात बताई जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिलहाल चलिए शबीर कुमार की आवाज़ में सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना।

दोस्तों बात कर रहे थे फिल्म नीरजा के बारे में, जहाँ जिसके कहानियों ने सीधे वास्तविक जीवन को प्रेरणा दी। साल 1986 पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट पर पैन एम फ्लाइट 73 का अपहरण हो गया। विमान में सैकड़ों यात्री सवार थे। उस मुश्किल घड़ी में एक युवा एयर होस्टेस ने अपनी सूझबूझ, साहस और कर्तव्य निष्ठा से अनेक यात्रियों की जान बचाई। उसका नाम था नीरजा भनोट। इसी सच्ची घटना पर आधारित थी फिल्म नीरजा। इस फिल्म को बनाने से पहले निर्देशक राम माधवानी और उसकी टीम ने महीनों तक रिसर्च की, नीरजा के परिवार से मुलाकात की, उनके पत्र पढ़े, उनके जीवन से जुड़े कई लोगों से बातचीत की, ताकि पर्दे पर दिखाई गई हर भावना वास्तविक रहे। मुख्य भूमिका निभाने वाली सोनम कपूर ने अपने किरदार की तैयारी के लिए एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली। उन्होंने नीरजा की बॉडी लैंग्वेज, बोलने के अंदाज और वास्तव व्यक्तित्व को समझने में काफी समय लगाया। फिल्म में विमान की सेट इतना वास्तविक बनाया गया था कि कई लोगों को लगा शूटिंग किसी असली विमान में हुई है। सेट के भीतर सीटों की दूरी, इमरजेंसी एग्जिट और केबिन का डिजाइन भी वास्तविक विमान से ही प्रेरित था। फिल्म के रिलीज होने के बाद नीरजा भनोट की बहादुरी के बारे में नई पीढ़ी ने जाना। कई स्कूलों और कॉलेजों में इस फिल्म पर विशेष चर्चा भी हुई। कई बार होता है ना कि साधारण इंसान की असाधारण मेहनत लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। ऐसी एक कहानी है एक छोटे से शहर की लड़की की, जिसने कई बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। बात कर रहे हैं हम महेंद्र सिंह धोनी की।

0: तो दोस्तों फटाफट चलिए हमारे अगले कॉलर को हम ऑन एयर ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सेल्यूलर सुपर हिट्स में।
1: नमस्कार पापिया जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं, सब ठीक ठाक
1: जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे परिवार में सब अच्छे हैं।
0: चलिए,
1: और मैं आपके परिवार के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सुखमय होंगे, अच्छे ही होंगे।
0: एकदम, बस आप लोगों की दुआ है सर। आपने परिचय नहीं दिया आपका, वो स्टेटमेंट जो एकदम सैनिक स्टेटमेंट जो होता है आपका,
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: चलिए बड़ा मजा आता है सुनने में कि। तो बताइए कैसे हैं, सब ठीक है घर परिवार में?
1: जी मेरे तो बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे ही हैं। और आज तो बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है और आज गर्मी भी महसूस हो रही है।
0: जी वो तो होगा ही, नॉर्मल है, जब बारिश होती तो फिर ठंड थोड़ी सी थी।
1: तो मेरी पसंद का गीत मैंने आपको बताया है।
0: जी बताइए,
1: बजा दीजिए, ये आपको भी अच्छा लगेगा, सभी सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा।
0: ठीक है, चलिए बताइए कौन सा गाना, कौन सा गाना है बता दीजिए, सभी सुनेंगे कौन सा गाना है।
1: अगर ये गीत बजाएंगे आप तो अच्छा लगेगा।
0: हाँ जी,
1: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: फिलहाल ये गाना तो अवेलेबल नहीं है, आपने दूसरा कुछ एक बताया था, बताइए।
1: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
0: चलिए तो फिर शाम हो चुकी है, तो फिर चलते हैं, सुनते हैं गाना। ओके, चलिए फिर वापस मुलाकात होगी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।

इस प्रेरणादायक गाने के साथ 12th फेल फिल्म का के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। लेखक अनुराग पाठक की पुस्तक पर आधारित यह फिल्म वास्तविक जीवन में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के संघर्ष की कहानी को सामने लाती है। एक साधारण परिवार, सीमित संसाधन, बार बार असफलता, लेकिन सपनों से कभी समझौता नहीं। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बनाते समय बनावटीपन से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। दिल्ली के मुखर्जी नगर और कई वास्तविक स्थानों पर शूटिंग की गई, जहां हर साल हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मुख्य भूमिका निभाने वाले विक्रांत मैसी ने अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए लंबे समय तक छात्रों के बीच समय बिताया। उन्होंने उनके रहन सहन, पढ़ाई के तरीके और संघर्ष को करीब से समझा। फिल्म की एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कई दृश्यों में वास्तविक प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी को भी शामिल किया गया है, जिसे दृश्य और अधिक वास्तविक लगे। फिल्म रिलीज होने के बाद देश भर की कोचिंग संस्थाओं और पुस्तकालयों में इसकी खूब चर्चा हुई। अनेक युवा ने इसे केवल फिल्म नहीं बल्कि अपनी यात्रा का आईना भी बताया। तो दोस्तों, जिन फिल्मों के बारे में हमने चर्चा की उनमें एक बात समान है कि इनकी ताकत इनकी सच्चाई है। इन फिल्मों ने हमें केवल मनोरंजन नहीं दिया बल्कि इतिहास, साहस, संघर्ष और उम्मीद का संदेश भी दिया। तो आज हमारा सफर उन फिल्मों के नाम रहा जिनकी नींव किसी कल्पना पर नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर रखी गई। ऐसी घटनाएं जिन्होंने कभी इतिहास बदला, कभी समाज को नई दिशा दी और कभी लाखों लोगों को सपनों पर विश्वास करना सिखाया। तो ऐसे में ही ऐसी ही फिल्में देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहे, बने रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही छायालोक सुनते रहे। अब छायालोक का जो अगला भाग है उसकी जो कमान है वो संभालेंगे रोशन मरारका, जी हाँ, आपके फेवरेट रोशन मरारका। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए उनका और तब तक एंजॉय कीजिए श्रेया घोषाल और शान के आवाज़ में 12th फेल से ये गाना।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो द रियल रेडियो पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका, लेकर कार्यक्रम छायालोक।

भाई दोस्तों, चेहरे में क्या लिखा है ये तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा दिल क्या चाहता है ये बता सकता हूँ। दिल ये चाहता है कि 2213-1341 पर आप आइए, अपने दिल की बात कहिए और अपने गाने की, यानी अपने दिल की जो फरमाइश है, जो चाहते हैं आप सुनना, उसकी फरमाइश कीजिए। नंबर है हमारा 2213-1341। आइए तब तक ये गीत सुनिए और आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मरार का आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहा है।

0: दोस्तों फिलहाल तो भाई मेरा दिल चाह रहा था कोई कॉलर फ्रेंड आ गए हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: आए बावरिया बोल खड़े थे कि शांतनु बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई, कैसे हैं शांतनु जी?
1: हम हाथ अफजल,
0: मैं भी अच्छा हूँ, बताइए।
1: अच्छा विजय पथ का राव में उनसे मुलाकात हो गया है, एक गाना
0: अच्छा,
1: सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा शांतनु जी, आप घबरा रहे हैं क्या, ये बताइए तो, ऐसा लग रहा है।
1: हाँ हिंदी आता नहीं है।
0: तो क्या हुआ, इसमें घबराने की क्या बात है, देखिए आप तो कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, है ना।
1: हाँ
0: बस केवल फोन को रेडियो सेट से थोड़ा दूर रखिए बस, और आराम से बात कीजिए, है ना। और बताइए कैसे हैं?
1: हाँ अच्छा है।
0: और प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा 7 बजे से?
1: हाँ बहुत अच्छा, जब सुनता हूँ आपके साथ बात नहीं होता।
0: बात नहीं होता, क्यों नहीं होता बताइए, आप नंबर ट्राई नहीं करते?
1: पहली बार बात हुआ।
0: अच्छा पहली बार बात हुई,
2: मेधावी साफल्य पहुंचे जाए। आज साधारण मान

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों इंतजार है आपका, आपके फोन कॉल्स का 2213-1341 पर, और तब तक सुनिए ये गीत और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 2213-1341 आपका रेडियो वाला दोस्त आपके फोन कॉल्स और आपकी फरमाइश का इंतजार कर रहा है।

दोस्तों कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो,

Hello? Hello? लगता है भाई कॉलर फ्रेंड कुछ या तो बोलना नहीं चाह रहे हैं या हमारे टेलीफोन सेट में कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कॉलर फ्रेंड की पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। साजन फिल्म से वो सुनना चाहते थे देखा है पहली बार। तो भाई देखा है पहली बार हमारे कॉलर फ्रेंड के लिए और इंतजार है आपके कॉल्स का 2213 1341 पर।

0: दोस्तों, फोन के सिग्नल लाल बत्ती बता रही है कि कोई कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, तो मेरे दिल को भी अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ भाई साहब, रेडियो सेट को थोड़ा दूर रखिए।
1: हाँ रोशन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार,
1: आप कैसे हैं? आप
0: हम तो अच्छे हैं भाई, कौन बोल रहे हैं आप?
1: अच्छा, मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है, नाश्ता उस्ता लगता है जरा अच्छे से किया है आपने आज?
1: अरे बारिश नहीं हो रही है यहाँ, गर्मी पड़ रही है बहुत हमारे यहाँ।
0: ओहो, ऐसी बात है, कहाँ रहते हैं आप?
1: हाँ जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सांकरा मानिकपुर रहता हूँ।
0: अच्छा, उधर बारिश नहीं हो रही?
1: नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है बिल्कुल।
0: अच्छा, ओके ओके, मतलब रोज चाहते हैं क्या बारिश हो?
1: बारिश हो तो जरा अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए।
1: कम कम हो,
0: बताइए।
1: और आज मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म आन मिलो सजना का वो गीत, यहाँ वहाँ सारे जगह जहाँ में तेरा राज है।
0: अच्छा,
1: और आपसे कहूँगा।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
1: प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो मिलने मिलाने का वादा करो।
0: क्या बात है।
1: और जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो, और फिर कब आ रहे हैं हमसे वादा करो।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, कल ही आ जाएंगे आप अगर बोले तो।
1: आ जाइए, आ जाइए, वेलकम।
0: चलिए ठीक है, कल भी मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। फिलहाल दोस्तों, श्याम कुमार जी की पसंद पर ये गीत।

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते, मैं बड़गांव शहर से प्रशांत ढोक बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई प्रशांत जी, कैसे हैं?
1: हाँ, मुझे आज तो मोहम्मद रफी का मृत्युवार्षिकी है, इसलिए मैं झुक गया आसमान सिनेमा छवि सिनेमा से। मोहम्मद रफी का गाया हुआ कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा, ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छे है,
0: मतलब
1: आपका आवाज थोड़ा धीमा आ रही है, सुनाई नहीं दे रही।
0: स्पीकर आपका वो जो है ना फोन का, उसको जरा ठीक करना होगा, समझ रहे ना? आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, लैंडलाइन से?
1: ना, मोबाइल से ही बात कर रहे हैं।
0: हाँ, तो उसका वो जो कान में सुनते हैं ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उसको एक बार ठीक करवा लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा। वैसे अभी भी वक्त है, 15 मिनट में आपके साथ हूँ, एक दो कॉल तो ले ही सकता हूँ। नंबर बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, 2213412213 नंबर है हमारा। दो बार नंबर आपको बता दिया, फोन करना है आपको, और आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

0: चलिए दोस्तों, हमारे छह लोग की महफिल को सजाने के लिए कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कॉलर फ्रेंड तो हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो हेलो हेलो हेलो लगता है कुछ गड़बड़ी है। आइए गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे।
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए।
1: हाँ नमस्कार।
0: हेलो हेलो हेलो हाँ जी बोलिए।
1: आवाज नहीं आ रही।
0: मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो बोलिए आप। हेलो दोस्तों, लगता है कुछ समस्या है। चलिए इनकी पसंद का आपको सुनवा देते हैं।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 8:56:25 हो गए हैं। वक्त अब आपसे आज्ञा लेने का है, तो फिलहाल आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका को दीजिए आज्ञा। फिर मिलूंगा कि कल शाम में आपके साथ, फिर मैं हाजिर रहूंगा 8 बजे छाया लोक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: बस बस बस बस, कहां पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है
1: तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: 1 2 3 4 सारे गा मामा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मामा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा
1: किशोर कुमार एवं मन्ना देर परे चलती का नाम गाड़ी फिल्म थे के
2: बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

अनुष्ठान सुनछेन मंजिरुस्सेफ एनएफएम रेनबोए। आपके लिए हिंदी छायाचित्र गानेर अनुष्ठानेर शेष गान किशोर कुमारेर कंठे मिली फिल्म थेके।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू